सुख शांति नहीं नहीं शांति नहीं। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम शंभुनाथ सुब्रह्मण्यम शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम ओम शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शरण भव सुब्रह्मण्यम हरिशरवण भव सुब्रह्मण्यम ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम हरिशरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम।